हमें भी ऐसे कोई जगह में अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौट हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल सकते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड।